0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार, नमस्ते, सुस्वागतम. मेरा नाम है स्वाति शर्मा और SBS के मेलबर्न स्टूडियो से हिंदी कार्यक्रम लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ आज यानी शनिवार 20 जून 2026 को. आज है साल का 171वां दिन. हमेशा की तरह आइए सबसे पहले आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं. इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के बुरुंचुरी और बुईबुरुन लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए, साथ ही जिनकी भूमि से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उन सभी मूल निवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों का भी हम आदरपूर्वक सम्मान करते हैं. तो दोस्तों, प्रोग्राम में आज क्या कुछ होगा उसके लिए आइए एक फटाफट नजर डाल लेते हैं आज के प्रोग्राम की रूपरेखा पर. सबसे पहले सुनेंगे देश दुनिया की मुख्य सुर्खियां, फिर इस हफ्ते वन नेशन की लीडर पॉलिन हैंसन की प्रेस क्लब में जो उन्होंने स्पीच दी, जो भाषण दिया वो काफी चर्चा में रहा, तो इस भाषण को लेकर उन्हें तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ रहा है. उसके राजनीतिक नतीजे क्या कह रहे हैं और किन किन मुद्दों पर उन्होंने बात उठाई थी जानेंगे खास रिपोर्ट में. फिर एक अंश आज लाऊंगी SBS हिंदी फ्लैशबैक से भारतीय भोजन शैली के बारे में, जिसमें बात होगी रिसर्चर डॉक्टर रति जानी से जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खान पान संबंधी आदतों पर अपनी राय शेयर करती हैं और हेल्दी खाने की आदतों को बढ़ावा देने के सुझाव भी दे रही हैं. और साथ ही आज शनिवार है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ताजा तरीन खबरें लेकर आएंगे आपके लिए बॉलीवुड टाइम में. इन सब के साथ साथ गीतों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, तो अगर आपकी भी कोई गीत की फरमाइश हो मुझे अभी लिख भेजिए. नंबर है 04397997667 और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर मेरे पास वो गाना हो तो मैं उसे आज के शो में ही बजा दूं. तो बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में और आज के शो का सवाल भी होगा, पर आइए सबसे पहले एक जायजा ले लेते हैं आज के मुख्य समाचारों का. नमस्कार, शनिवार 20 जून 2026 के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं स्वाति शर्मा. सरकार का कहना है कि मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पाए गए H5 एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू स्ट्रेन से संभावित प्रसार को रोकने के लिए अधिकारी आपात योजनाओं पर काम कर रहे हैं. इस स्ट्रेन की पहचान एक प्रवासी स्कुआ पक्षी में हुई जिसकी रविवार रात मौत हो गई थी. यह पक्षी पर्थ के दक्षिण में एस्पेरेंस के पास एक दूरदराज समुद्री तट पर बीमार हालत में मिला था. यह पहली बार है जब बर्ड फ्लू के इस घातक प्रकार का पता ऑस्ट्रेलियाई मेनलैंड पर चला है. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बेथ कुकसन का कहना है कि जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह बीमारी अन्य पक्षियों या पोल्ट्री तक फैल सकती है या नहीं. बात करें फीफा विश्व कप की, तो सियाटल में अमेरिका के हाथों 2-0 की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप उम्मीदों को करारा झटका लगा है. मैच के 11वें मिनट में कैमबर्गेस से अनजाने में आत्मघाती गोल हो गया जिससे सॉकरूज पिछड़ गए. इसके बाद हाफ टाइम से ठीक पहले एलेक्स फ्रीमैन ने अमेरिका की बढ़त दोगुनी कर दी. ब्रेक के बाद टोनी पोपोविच की टीम ने ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया. सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों नेस्टोरी ईरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने टीम में नई ऊर्जा भरी और ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की कोशिश की, लेकिन सॉकरूज कोई गोल नहीं कर सके. इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ गया है और अब सबकी नजरें 26 जून को पैराग्वे के खिलाफ होने वाले अहम अंतिम ग्रुप मुकाबले पर हैं. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि अस्थायी ईंधन उत्पाद शुल्क में कटौती यानी टेम्परेरी फ्यूल एक्साइज कट के भविष्य को लेकर आने वाले दिनों में फैसला किया जाएगा. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समझदारी से काम लें और पेट्रोल का अनावश्यक भंडारण न करें. चिंता जताई जा रही है कि इस राहत के खत्म होने की संभावना के चलते मांग में एक बार फिर अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास पर्याप्त ईंधन संसाधन हैं और 51 जहाज भी ऑस्ट्रेलियाई तटों की ओर आ रहे हैं. अब रुक करें विश्व समाचारों का, तो लंदन के पास 2 यात्री ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने मृतक के परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: पचास टन सोने का भंडार मिला है जिसकी घरेलू बाजार के हिसाब से अनुमानित कीमत 7,500 करोड़ रुपए से 9,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इससे देश में न सिर्फ गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ सकता है बल्कि गोल्ड इंपोर्ट पर देश की निर्भरता कम होने की भी उम्मीद है। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही, और खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां, और अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। तो वन नेशन के नेता पॉलिन हैंसन ने इस हफ्ते नेशनल प्रेस क्लब में अपना पहला भाषण दिया और उस भाषण की काफी आलोचना हो रही है। उस भाषण में उन्होंने प्रवासियों, पेड पेरेंटल लीव, ट्रांसजेंडर ऑस्ट्रेलियाई लोगों और पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स को भी निशाना बनाया। ऐसे आरोप उन पर लगाए गए हैं और साथ ही आलोचक उनके इस भाषण को काफी चिंताजनक और गैर जिम्मेदाराना भी बता रहे हैं। क्या कुछ कहना है इन आलोचकों का और क्या कुछ कहा पॉलिन हैंसन ने इस भाषण में, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीति में दो दशक से अधिक समय बिताने के बाद नेशनल प्रेस क्लब में अपने पहले संबोधन में वन नेशन की नेता पॉलिन हैंसन ने ऑस्ट्रेलिया को एक एकल सांस्कृतिक समाज यानी मोनो कल्चरल सोसाइटी बनाने की बात कही। उन्होंने पत्रकारों की आलोचना की और पेड पेरेंटल लीव की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया। सेनेटर हैंसन के भाषण का मुख्य केंद्र यह दावा था कि ऑस्ट्रेलिया के हाउसिंग क्राइसिस के पीछे इमिग्रेशन और बहुसांस्कृतिकता जिम्मेदार है।
2: Immigration or immigration policy has our country in the state of crisis. At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism.
1: SBS से बात करते हुए बहुसांस्कृतिक मामलों की मंत्री एन एली ने इन टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना और नफरत फैलाने वाला बताया।
3: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that. That our diversity is our strength.
1: ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अर्थशास्त्री मैट ग्रुडनॉफ्ट का कहना है कि आंकड़े दिखाते हैं कि प्रवासियों का हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनका कहना है कि आमतौर पर प्रवासी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हैंसन ने यह भी वादा किया कि वे उन देशों से इमिग्रेशन पर रोक लगाएंगी जिन्हें वे कट्टरपंथी इस्लाम से प्रभावित मानती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए वन नेशन की नेता ने कहा कि उन्हें लगता है कि फिलहाल ASIO की निगरानी सूची में 18,000 लोग हैं। हालांकि इस आंकड़े का स्रोत स्पष्ट नहीं है क्योंकि ASIO का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई निगरानी सूची की संख्या उपलब्ध नहीं है। ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल्स के अध्यक्ष डॉ रातेब जुनैद का कहना है कि समस्या मुस्लिम ऑस्ट्रेलियाई नहीं है।
4: मुस्लिम ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट गेस्ट, वी आर नॉट अ प्रॉब्लम टू बी मैनेज्ड, वी आर नॉट अ सिक्योरिटी रिस्क टू बी एक्सप्लेन्ड अवे, वी आर सिटीजंस, नेबर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, वॉलंटियर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, कम्युनिटी लीडर्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
1: बहुसांस्कृतिकता के मुद्दे पर हैंसन ने कहा कि 4 में से 1 ऑस्ट्रेलियाई घर पर अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि लोग एक ही भाषा नहीं बोलते तो देश सामाजिक एकता कैसे हासिल कर सकता है।
2: Only a fool would ignore the growing language problem, which is a function of immigration.
1: हालांकि घर पर दूसरी भाषा बोलने का यह मतलब नहीं कि लोग अंग्रेजी नहीं बोलते। पिछली जनगणना में केवल 3.4% लोगों ने बताया था कि वे अंग्रेजी अच्छी तरह या बिल्कुल नहीं बोल पाते। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी ABS के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 2025 तक 75% ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि बहुसांस्कृतिकता

0: ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी है। सेनेटर हैंसन ने ट्रांसजेंडर ऑस्ट्रेलियाई लोगों को भी निशाना बनाया और दावा किया कि जिसे वे ट्रांसजेंडर विचारधारा कहती हैं, वह समाज को संक्रमित कर रही है।
1: This transgender movement is a militant force right throughout society and must be confronted. I repeat, through a whole stack of government authorities, which the average Australian knows nothing about because they are too busy getting on with their lives, this movement, like militant Islam, is everywhere and seeks to redefine humanity and biology.
0: ABS के आंकड़ों के अनुसार 1% से भी कम ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस या जेंडर डाइवर्स हैं और 81% ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि उन्हें अन्य ऑस्ट्रेलियाई लोगों के समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। ग्रीन्स की सेनेटर सारा हैंसन यंग ने इस भाषण को निंदनीय बताया और कहा कि इसमें कोई वास्तविक नीतिगत प्रस्ताव नहीं था।
2: What it showed me is Pauline Hanson is the same old Pauline Hanson she's always been. What was on display yesterday was a rambling Trumpian speech based on hate and fear, not on hope and ideas.
0: पेड पेरेंटल लीव पर भी सेनेटर हैंसन के रुख का विरोध हो रहा है। समर्थक समूहों का कहना है कि इस मुद्दे पर उनके विचार पुराने हो चुके हैं। हैंसन ने सवाल उठाया कि यदि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो व्यवसायों को उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर क्यों किया जाए। उन्होंने कहा कि जब वे स्वयं सिंगल मदर के रूप में अंशकालिक यानी पार्ट टाइम काम करते हुए बच्चों का पालन पोषण कर रही थी तब उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। एडवोकेसी समूह द पेरेंटहुड की अभियान निदेशक टीगन गिलक्रिस्ट का कहना है कि हैंसन ने बच्चों का पालन पोषण एक बिल्कुल अलग दौर में किया था।
3: I managed is a memory from Pauline Hanson, and it's not a policy. Pauline Hanson's been describing in Australia from when she raised her kids, and it's not the one that we're raising our kids in today. In an environment where cost of living is sky high and families are struggling.
0: प्रेस को लेकर की गई टिप्पणियों के कारण भी हैंसन की आलोचना हो रही है। मीडिया एंटरटेनमेंट एंड आर्ट अलायंस ने उनके बयानों को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। प्रेस क्लब के संबोधन के दौरान जब गार्डियन की पत्रकार सारा मार्टिन ने उनसे सवाल पूछा तो हैंसन ने उन्हें घटिया पत्रकार कहा और कहा कि भविष्य के कार्यक्रमों में उन्हें बैन कर दिया जाएगा।
1: Honestly, you never give up. I've never seen a person that's such a trashy journalist, you know, and what you put out all the time, you've got this obsession with constantly trying to pull down myself, my party, or Mrs. Reinhart, whatever you do.
0: Nationals की सेनेटर ब्रिजिट मैकेंजी ने चैनल 9 से कहा कि यह रवैया एक चिंताजनक मिसाल कायम कर सकता है।
4: You need to be able to face the media and the tough scrutiny, but I am concerned that One Nation also wants to pick and choose which media they take questions from, who they like or they don't like. That might be okay for Donald Trump to pick and choose which media he takes questions from, but it does not go well here in a democracy like.
0: Pauline Hanson ने SBS को बंद करने और ABC में भारी कटौती करने का भी वादा किया। 2026 रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई जनता SBS और ABC को देश के सबसे भरोसेमंद समाचार स्रोतों में मानती है। लेकिन हैंसन का दावा है कि इंटरनेट उपलब्ध होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक प्रसारक SBS की अब आवश्यकता नहीं है। ABC के बारे में उनका कहना है कि उनकी पार्टी की सरकार के अधीन क्षेत्रीय और ग्रामीण सेवाएं टैक्सपेयर फंडेड रहेंगी लेकिन बड़े शहरों में यह केवल सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेवा बन जाएगी। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी का कहना है कि सार्वजनिक प्रसारकों की ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण भूमिका है।
5: I think that the idea that you just exclude media and abolish SBS is what they're talking about and the ABC is I think you know I would hope that all media organisations come out and oppose that because they should.
0: विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने भी इस भाषण की आलोचना करते हुए टुडे शो से कहा कि हैंसन ने कोई विश्वसनीय नीतिगत योजना पेश नहीं की है।
6: Oh, well, there wasn't enough detail to really comment on most of the plan because I don't see it. What we need is a credible plan. We need a pathway out of this. And that is what I am laying out every day. I know that's the hard road. I understand that's the hard road. But it's the road we must go on if we are to get our country back to where it needs to be. It's not enough to be angry. I can understand the anger. I do get it. But we have to have a credible plan.
0: SBS News से सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट को

0: SBS हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने। धन्यवाद। SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। दोस्तों, पॉलिन हैंसन के इन विचारों के बारे में आपका क्या कहना है, अगर आप बताना चाहें तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। नंबर है 04397997767। और इस रिपोर्ट के बाद अब समय हो गया है पहले अंतराल का। ब्रेक के उस पार बताऊंगी आज का सवाल भी, तो जुड़े रहिएगा SBS हिंदी पर। हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: यू शुडन्ट हैव टू चूज बिटवीन स्पीड, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू। With Spectrum fiber powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno. Vivimos en el fantástico y terrible viaje de Lubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Árbol Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en árbol.com/cambiar.
3: SBS Audio.
4: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
5: यही चाहता था यार। चुनते हाल में।
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
12: sbs.com.au/audio।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है SBS के हिंदी कार्यक्रम पर। आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जैसा कि वादा किया था पूछूंगी आज का सवाल। तो आज का सवाल मेरा है कि भारत में आप जिस भी शहर से आते हैं, आपके शहर का सबसे मशहूर खाना या सबसे कोई मशहूर खाने की चीज, पीने की चीज कौन सी है आपके हिसाब से। जैसे मेरे शहर में एक छोले कुलचे बड़े फेमस हैं, उसे नाम है दीनानाथ के छोले कुलचे। वो बड़े फेमस हैं और मुझे बड़ी याद आती है उनकी। तो ऐसे ही आपके शहर का ऐसा कौन सा खाना, कौन सी डिश, कौन सी पीने की चीज़ बेहद मशहूर है जो आपको बड़ी याद आती है, वो आज मुझे ज़रूर बताइए। और साथ में अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिएगा। नंबर तो आपको पता ही है, नंबर है 04397997767। एक बार फिर से दोहरा दूँ, आपके शहर, भारत में आपके शहर का सबसे मशहूर खाना, खाने की चीज कौन सी है आपके हिसाब से। तो जब तक आप भेजते हैं अपने जवाब, हम सुनते हैं SBS हिंदी फ्लैशबैक से अगला अंश। डॉक्टर रति जानी, इन्हें आज हम सुनेंगे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों की खाने की पसंद और खाने के पैटर्न को समझने के लिए एक दशक से ज्यादा समय तक रिसर्च की है। तो समुदाय के लिए कुछ हेल्दी खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव लेकर आई हैं, जो उन्हें आज साझा करेंगी वो इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को पेश कर रही हैं भव्या पांडे और ये प्रस्तुति है SBS हिंदी के फ्लैशबैक से।
13: तो राति जी, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है।
14: थैंक यू भव्या
13: जी। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं और ये बताएं कि आप करती क्या हैं।
14: हाँ जी, तो भव्या, मैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर हूँ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में
13: जी।
14: एंड आई एम ए एडवांस एक्रेडिट प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन, यानी कि मेरा जो प्रोफेशन है वो एक डाइटिशियन का है। डाइटिशियन इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सके तो फूड और न्यूट्रिशन डॉक्टर वैसे। तो मेरा प्रोफेशन जो है फूड एंड न्यूट्रिशन में है। मैं सीनियर लेक्चरर हूँ और साइड में मैं मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब भी हम यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में हम टीचिंग भी करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और खुद का रिसर्च भी करते हैं। और मेरा जो रिसर्च है वो हमारी इंडियन कम्युनिटी के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया में। और मैं ये रिसर्च जो है तकरीबन 10 या 12 सालों से अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने PhD भी अब हमारे इंडियन कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया पे किया था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ मेरा बैकग्राउंड और मेरा प्रोफेशन

0: शेयर करने के लिए।
1: जी, तो रति जी, आप इतने सालों से फूड रिसर्च में हैं और हाल ही में आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बताएं।
0: हाँ जी भव्या, तो भव्या जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है उसका नाम है द पिकी ईटिंग प्रोजेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स हम पिकी ईटिंग मतलब क्या होता है, पिकी ईटिंग मतलब कि बहुत ही रेगुलर एंड साधारण सा बिहेवियर है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको पूछूं भव्या कि आपको करेला अच्छा लगता है
1: जी नहीं।
0: जी नहीं, राइट, एग्जैक्टली। तो भव्या जब भी आपको करेला फॉर एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगता है तो आपकी मम्मी ने शायद एक दो बार तो बोला ही होगा कि भव्या तो बड़ी फसी ईटर है,
1: जी
0: खाती नहीं है करेला ना। तो भव्या मेरा रिसर्च जो है वो ये बिहेवियर के ऊपर है कि जब भी हमें कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हमेशा कारण ये नहीं होता कि हमें बस पसंद नहीं है और हम नाटक कर रहे हैं और हम बड़े चूजी हो रहे हैं।
1: जी
0: वो एक कारण है जो हमारे एनवायरनमेंट या हमारे वातावरण बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अलग अलग कारण जो होते हैं भव्य, एक उसमें से एक कारण है कि हमारे जेनेटिक्स भी डिफाइन करते हैं कि हमें कोई खाना अच्छा लगे या ना लगे। एक ऐसी हम चीज होती है जिससे हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर वो सुपर टेस्टर है या नॉन टेस्टर है। अभी उसका मतलब क्या हुआ भव्य, अगर आप सुपर टेस्टर है तो आप में ऐसे स्पेसिफिक जीन्स हैं, आपके में ऐसे स्पेसिफिक जेनेटिक्स हैं जिसकी वजह से आपको करेला ज्यादा कड़वा लगता है इन कंपैरिजन टू अदर लोग जो नॉन टेस्टर है। तो फिर आप करेला खाएं, मैं करेला खाऊं, पर अगर आप सुपर टेस्टर है तो आपको ज्यादा कड़वा लगता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं है कि हम नाटक करते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है,
1: जी
0: बट कभी कभी जेनेटिक्स भी इसमें एक रोल प्ले करता है हमें चीजें पसंद या ना पसंद करने के लिए। तो बेसिकली इस फाउंडेशन, इस थियोरी के ऊपर भव्य मैंने मेरा रिसर्च बनाया है जो जिसके थ्री आर्म्स है। मेरा रिसर्च इंडिया में है, मेरा रिसर्च ऑस्ट्रेलिया में है और मलेशिया में है। और इसमें जो है मैं थ्री स्टेजेस पे ये रिसर्च कर रही हूँ। पहला मेरा जो स्टेज है वो बच्चों के ऊपर है। मेरा सेकंड रिसर्च जो है जिसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये रिसर्च मैं करंटली कर रही हूँ, वो हमारे अडल्ट्स के ऊपर है, हमारे भाई बहनों के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अडल्ट 18+ जो है उनके ऊपर मैं ये रिसर्च कर रही हूँ समझने के लिए हम जो खाते हैं क्यों ऐसा खाते हैं वो हम समझ नहीं सकते इवन इन अडल्टहुड। इसलिए मेरा जो सेकेंड फेज ऑफ रिसर्च है वो अडल्ट की ईटिंग पैटर्न्स, क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं उसके ऊपर है। और मेरा थर्ड जो स्टेज है भव्य वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो स्टेज इसके ऊपर है कि अभी मुझे स्टेज वन और स्टेज टू से पता चल गया है कि हम हमारे इंडियन बच्चे जो है, हमारे इंडियन अडल्ट भाई बहन जो है वो क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। मेरा स्टेज थ्री सॉल्यूशंस के ऊपर है कि अभी इसका क्या किया जाए। अभी हमें समझ में आ गया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन जो मैं रिसर्च कर रही हूँ भव्य वो मिरेकल बेरी के ऊपर है। अभी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है मिरेकल बेरी, इसका लाइक क्या मतलब है। तो भव्य ये मिरेकल बेरी जो है वो वेस्ट अफ्रीका से आई है और ये मिरेकल बेरी जो है वो ऐसी बेरी है जैसे कि हम स्ट्रॉबेरी बोले, ब्लूबेरी बोले, वैसी टाइप की एक ये भी एक बेरी है। तो भव्य ये बेरी का ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर हम ये बेरी खाए और उसके ऊपर कुछ भी खट्टा खाए, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा नींबू पानी ले ले या ऑरेंज जूस ले ले, वो जो है वो बेरी को इस तरीके से एक्टिवेट करता है कि इसके बाद हम जो भी कड़वा खाए वो हमें थोड़ा स्वीट टेस्टिंग हो जाता है। तो इमेजिन आपको जो करेला अच्छा नहीं लगता पर अगर आप मिरेकल बेरी खाए उसके ऊपर थोड़ा नींबू पानी पिए, उससे जो है आपके एक पर्टिकुलर टाइप के माउथ का पीएच जो है, माउथ का जो एनवायरनमेंट जो होता है एक एसिडिटी लेवल वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद अगर आप करेला खाएंगी तो आपको ये करेला स्वीट लगेगा रादर देन कड़वा लगने के लिए। तो भव्य दिस कुड बी से वन से अप्रोच, नॉट दी ओनली अप्रोच बट एक तरीका जिससे हम जो चीजें हमारे लिए अच्छी है पर हमें वो पसंद नहीं है वो हम खाना धीरे धीरे चालू करें और धीरे से हम हमारे डाइटरी पैटर्न्स चेंज कर पाए।
1: जी, बिल्कुल। तो रति जी, मैं इस रिसर्च पर कुछ और भी

0: जानना चाहूंगी कि आपने बात की थी स्टेज टू की, जहां आपने इंडियन बच्चों और अडल्ट्स की ईटिंग हैबिट्स को देखा, तो किस तरह की चीजें वो लोग नजरअंदाज या अवॉइड करते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं लोग?
1: हाँ जी, तो भव्या, मैंने चिल्ड्रन, हमारे बच्चों जो है, इंडियन कम्युनिटी के जो बच्चे हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में, उनके ऊपर मैंने ये देखा कि हाँ, हम जो, और ये रिसर्च जो है मैंने बच्चों के ऊपर किया और उनकी माताओं के ऊपर भी किया, तो मम्मी एंड किड्स, बोथ ऑफ देम
0: जी
1: वेर इन्वॉल्व. तो यहाँ पे मैंने ये देखा भव्या कि जो हम सोचते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते, और फॉर एग्जाम्पल जो है कि पटेटोस जो है ज्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर सर्टन टाइप के फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते. तो मैंने ये देखा कि हमारे कल्चर में हम, क्योंकि बच्चों को खिलाते हैं और हम हमारे बच्चों को जैसे कि ऐसा नहीं करते कि नहीं अभी तुम अपने आप खाओ, हम बहुत ही गर्व लेते हैं हमारे बच्चों को, यू नो, हाथ से खिलाने में, देखने के लिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पोषण कर रहे हैं. तो इन अ वेरी टिपिकल वे, बच्चों को जो है सब्जियां एंड थोड़े टाइप के फ्रूट्स पसंद नहीं थे, पर उनको बड़ा मजा आता था अपने चॉकलेट चिप्स, कैंडीज, ये सब खाने के लिए. और मम्मियां बड़ी परेशान थी कि मैं मेरे बच्चों को जो चीजें अच्छी है वो कैसे खिलाऊं. तो इसके लिए फिर मैंने मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस में काफी सोल्यूशंस ढूंढे भव्या. फॉर इंस्टेंस, मैं एक सिंपल सोल्यूशन बताती हूँ भव्या. फॉर इंस्टेंस, मम्मियों ने कहा कि मेरे बच्चे जो है वो पालक नहीं खाते, ये ब्रोकली नहीं खाते, एंड फॉर एग्जाम्पल केल नहीं खाते, ये सब
0: जी
1: टाइप के पत्ते वाली हरी पत्तियां जो है वो नहीं खाते, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, आप किस तरीके से खिलाते हैं? तो भव्या, मैंने ये जाना कि ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद हम मोस्टली जो है हमारा डाइटरी स्टाइल जो है वो ऑस्ट्रेलियन के जैसे करने की से अनकॉन्शियसली भी, यू नो, हम
0: जी
1: अडेप्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि मैं मेरे बच्चों को स्पिनच सैलेड देती हूँ, या फिर मैं केल सैलेड बनाती हूँ, और मैं मेरे बच्चों को एंकरेज करती हूँ खाने के लिए. तो फिर मैंने बोला कि हमें जो है हमारे बच्चों को हरी भाजियां खिलानी है, व्हाई नॉट वी गो बैक टू अवर कल्चर, वी गो बैक टू अवर रूट्स, विच
0: जी
1: इज हम क्यों पालक की सब्जी, जैसे पालक पनीर बना के नहीं खिलाते, या फिर फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो था उनको फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड चने या छोले नहीं पसंद थे, पर हम उनको बॉइल करके क्यों देते हैं? दैट इज अ वेरी से नॉन इंडियन वे ऑफ ईटिंग. हम क्यों छोले चाट नहीं बनाते, जो हमें फॉर एग्जाम्पल, जो मैं मुंबई से आती हूँ, तो चाट, फॉर एग्जाम्पल चाट वॉज अ वेरी फेमस से स्ट्रीट फूड दैट वी यूज टू हैव, वेरी हेल्दी एंड वेरी फेमस स्ट्रीट फूड. तो मैंने बोला कि व्हाई डोंट वी गो बैक टू अवर कल्चर, हम क्यों बच्चों को कॉकेशियन वे से खिलाना चाहते हैं, व्हाई कॉन्ट वी
0: जी
1: फीड द सेम वेजीज बट इन एन इंडियन स्टाइल, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं, हमारे जो कुकिंग टेक्निक्स हैं, उससे जो है हम कोई भी सिंपल सी पत्ते भी एकदम टेस्टी बना सकते हैं. तो मैंने
0: जी
1: ये देखा मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस के रिसर्च में कि जब मैंने एंकरेज किया, जो मम्मी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 years से रहती है, एंड इट इज वेरी वेरी नेचुरल टू लाइक, यू नो, एडॉप्ट ए न्यू कंट्रीज डाइटरी पैटर्न, बट जब हम हमारे कल्चरल रूट्स में वापस जाते हैं, तो उससे बच्चों का डाइट जो है इम्प्रूव हुआ, सुधर गया. फॉर इंस्टेंस, उनके डाइटरी पैटर्न में दे स्टार्टेड लाइकिंग टू ईट पालक एज पालक पनीर, रादर देन हैविंग से अ स्पिनच सैंडविच और अ स्पिनच सैलेड.
0: जी रति जी, मुझे उम्मीद है कि आज हमारे श्रोताओं को भी ये सभी बातें सुनकर खूब सारी नई जानकारी भी मिली होगी, और आपका भी SBS हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू भव्या, शुक्रिया सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल. आई एम वेरी ग्रेटफुल.
2: दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग थी ये बातचीत रति जी के साथ, पर आपको बता दूं कि ये उनके साथ हुई बातचीत का पूरा जो पॉडकास्ट है वो नहीं है, ये उसका सिर्फ एक छोटा सा भाग है। समय की कमी के कारण मैं पूरा यहाँ नहीं चला सकती, पर आप इसे पूरा सुन सकते हैं। आपको तो पता ही है हमारी वेबसाइट पर सभी पॉडकास्ट हमारे हैं, तो आप जा सकते हैं sbs.com.au/hindi पर, और वहाँ आप ये पूरी बातचीत सुन सकते हैं जिसमें डॉक्टर रति ने और भी बहुत सारी टिप्स हैं हेल्दी ईटिंग के लिए वो साझी करी हैं। तो चलिए, यही वक्त हो गया है पहले गीत का, आइए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना 90s से। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा।

यहाँ कुछ मैसेज आ गए हैं जिन्हें मैं पढ़ लेती हूँ। अभी अभी कुमार जी का मैसेज आया है, कहते हैं, हाय स्वाति जी, आई एम फ्रॉम चेन्नई एंड आई लाइक डोसा, कोकोनट राइस, लाइम राइस एंड उत्पम, बट एज आई ग्रू अप इन कोलकाता आई लाइक खिचड़ी दे सर्व इन दुर्गा पूजा, आई ऑल्सो लाइक झालमुरी विच इज अ पॉपुलर स्ट्रीट फूड एंड आई ऑल्सो लाइक रसगुल्ला, गुलाब जामुन एंड जलेबी। ओहो कुमार जी, पानी ला दिया आपने मुंह में।

0: दोस्तों और भी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं आपके, इन्हें पढ़ूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक पर जाना अब जरूरी हो गया है। लेकिन ब्रेक के दौरान आप अपने जवाब मुझे भेजिए। मेरा सवाल है कि भारत में आपके शहर का सबसे मशहूर खाना, कोई स्ट्रीट फूड या कोई फल या पीने की चीज, कुछ भी, क्या है, कौन सी है आपके हिसाब से? नंबर है 0439799767। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद।
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें।

0: SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है SBS के हिंदी कार्यक्रम में। आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। तो ब्रेक पर जाने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा है आज कि भारत में आपके शहर का या आपकी पसंद के किसी शहर का सबसे मशहूर खाना कौन सा है, कोई स्ट्रीट फूड या कोई फल या कोई पीने की चीज क्या है, कौन सी है। मैंने बताया था कि मेरे शहर के दीनानाथ के छोले कुलचे बड़े फेमस हैं और जब भी जाती हूँ तो वो तो ज़रूर खाना ही खाना है, चाहे हर रोज़ खाया जा सके। तो इसी सवाल के जवाब में आपके बहुत से मैसेजेस मेरे पास आए हैं। एक तो हेमलता पुरोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। कहती हैं, नमस्ते स्वाति बैन एंड योर टीम, नाइस टू हेयर योर ब्यूटिफुल वॉइस आफ्टर लॉन्ग टाइम। धन्यवाद हेमलता जी। तो वो कहती है, इन इंडिया गुजरात सिटी अहमदाबाद गुजराती ढोकला उनका फेमस है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि गुजरात में गए और ढोकला नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया है ना। और अमित चड्डा जी, आपने बड़ी सारी डिशेस के नाम भेजे हैं, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ के। दिल्ली से कहते हैं कि बंगाल स्वीट साउथ एक्स की चाट, और उसके बाद उन्होंने और भी भेजे हैं, ऑल्सो कुल्फी, रोशन के छोले भटूरे और पुरानी दिल्ली के कबाब और मीठा पान दिल्ली ओरियन का जी। तो ये सब कुछ मुझे भेज दिया है अमित चड्डा जी ने, भाई मैं क्या बताऊँ अब। साथ ही राजेंद्र वोहरा जी का भी मैसेज आया है अभी अभी, कहते हैं, स्वाति जी नमस्कार, मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ और रोशन की कुल्फी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, रोशन की कुल्फी के दो वर्ड्स तो हो ही गए। अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर डिनर के बाद हम पूरा परिवार रोशन की हट्टी पर कुल्फी खाने के लिए जाते हैं। अरे ये सारे दिन तो बस इंडिया में ही देखने को मिलते थे कि डिनर करो और पूरे परिवार के साथ बाहर जाओ, डिजर्ट खा के आएंगे, कुल्फी खा के आएंगे, है कि नहीं। तो ये सब मैसेजेस आपके आ रहे हैं, आते रहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और भी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ की छोटी छोटी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जिन जो शायद वर्ल्ड फेमस ना हो पर आपके शहर की वो सबसे खास बात होती है, वो कौन सी है आपके शहर की, मुझे जरूर बताइए। नंबर है 04397997667। फिलहाल हम बदलते हैं अपने शो की गाड़ी का पहिया और रुक करते हैं माया नगरी की ओर, जहां से खबरें लेकर आ रही हैं नेहा बॉलीवुड टाइम में।
2: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं फिल्म वेलकम टू द जंगल की। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर सभी भाषाओं में YouTube पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। वहीं IMDb की टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन फिल्मों की सूची में भी पहले स्थान पर पहुंच गया है और सभी भाषाओं में YouTube पर #1 ट्रेंड कर रहा है। अभिनेता अन्नू कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म उत्तर द पुत्र को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि इसकी कहानी और भावनात्मक गहराई ने व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित किया है। ये फिल्म उनके लिए बेहद खास है। फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशंस का बेहतर संतुलन है। ये एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। फिल्म 24 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। धमाल 4 लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के नए गाने चटनी ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच उत्साह और बढ़ा दिया है। ये एक हाई एनर्जी लोक संगीत से प्रेरित

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर सलमान खान की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने फिल्म काला हिरण की रिलीज और प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सलमान की अर्जी में कहा गया है कि फिल्म और उससे जुड़े प्रमोशनल कंटेंट 1998 के काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित या उस पर आधारित प्रतीत होते हैं। अर्जी में ये भी कहा गया है कि पोस्टर में किरदार को हथियार के साथ दिखाया गया है, जबकि आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में सलमान बरी हो चुके हैं। ऋतिक रोशन अब सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्क्रीन प्रेजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी हॉलीवुड फिल्म की घोषणा नहीं हुई है। एक तरफ एक्टर के तौर पर ऋतिक अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी क्रिश 4 की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्माता के रूप में अपने बैनर HRX फिल्म्स का विस्तार हो रहा है। ऐसे में नए ग्लोबल डील ऋतिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स, को प्रोडक्शन, ग्लोबल स्ट्रीमिंग कंटेंट और नए क्रिएटिव सहयोगों के रास्ते खोल सकती है। बॉलीवुड फिल्म समर्पित फादर्स लव का नया गाना उदास रिलीज हो चुका है। पिता और संतान के टूट रिश्ते पर आधारित ये गीत

0: संवेदनाओं से भरपूर है।
1: आँखों की गलियों में ख्वाब टूट के पानी पानी हो गए।
0: खबर है कि फरहान अख्तर को नीरज पांडे के निर्देशन में बनने वाली बायोपिक में म्यूजिक कंपोजर आरडी बर्मन का किरदार निभाने के लिए अप्रोच किया गया है। मेकर्स इस फिल्म में फरहान को लीड रोल में कास्ट करने के इच्छुक हैं। खबर ये भी है कि नीरज कुछ समय से इस बायोपिक पर काम कर रहे हैं। दावा है कि फरहान आरडी बर्मन का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वो उनकी जिंदगी को पर्दे पर लाने के लिए उत्साहित हैं। फिल्म में ओरिजिनल गानों के सबसे अच्छे वर्जन का इस्तेमाल करने के लिए म्यूजिक सेशन भी शुरू हो चुके हैं। इमरान हाशमी हरिद्वार में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। सेट पर एक सीन का शूट चल रहा था जिसमें कैफे एंड बार का बोर्ड लगा था। कुछ हिंदूवादी संगठनों और तीर्थ पुरोहितों ने इस बात का पता चलते ही सेट पर पहुंचकर जोरदार विरोध शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठनों और तीर्थ पुरोहितों का विरोध देखकर फिल्म की टीम को कैफे एंड बार का बोर्ड हटाना पड़ा। उभरते संगीतकार दर्रिश और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक ने मिलकर नया रोमांटिक गीत अपना चेहरा दिखा रिलीज किया है। गीत रोमांस और विरह की भावनाओं पर आधारित है। सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर 2 में पहले शाहरुख खान एक कैमियो करने वाले थे, लेकिन समय की कमी और डेट्स की दिक्कत की वजह से अब उनकी जगह ऋतिक रोशन नजर आएंगे। ऋतिक रोशन और रजनीकांत पूरे 40 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। इससे पहले दोनों साल 1986 में आई फिल्म भगवान दादा में नजर आए थे, जिसमें ऋतिक ने एक बाल कलाकार के रूप में रजनीकांत के गोद लिए हुए बेटे का रोल निभाया था। फिल्म डॉन 3 को लेकर एक्टर रणवीर सिंह और प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच चल रहे विवाद में अब पंजाबी एक्टर सिंगर एमी विर्क रणवीर के समर्थन में आए हैं। एमी विर्क ने कहा है कि इस मामले में रणवीर की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेकर्स पर निशाना साधते हुए कहा कि जब रणवीर की फिल्में फ्लॉप हो रही थी तब मेकर्स ने फिल्म शुरू नहीं की, लेकिन जैसे ही रणवीर की फिल्म धुरंधर हिट हुई तो वे अपने पैसे मांग रहे हैं। भाजपा सांसद और मशहूर गायक मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे होने की खुशी में एक नया गाना सपना है यही मोदी का गाना रिलीज किया है।

फ्रेंचाइजी तनु वेट्स मनु सुपर हिट सीरीज का तीसरा भाग तनु वेट्स मनु द नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नई जानकारी सामने आई है। फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होगी, इसी साल फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। फिल्म की घोषणा इरोज इनोवेशन द्वारा हाल ही में जारी की गई फिल्म का निर्देशन मिताक्षरा कुमार करेंगी। 1994 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म मोहरा के पूरे 30 साल बाद अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की सुपर हिट तिकड़ी एक बार फिर पर्दे पर साथ वापसी कर रही है। ये तीनों कलाकार जल्द ही कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल 3 में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद रवीना टंडन ने अपने इंस्टाग्राम पर सेट के पीछे की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने अक्षय और सुनील शेट्टी के साथ अपनी एक पुरानी फोटो भी पोस्ट की है। वेलकम टू द जंगल 3 26 जून को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म हीरा रांझा 1970 में आई थी, जिसका एक गाना रिकॉर्ड किया गया था। मोहम्मद रफी गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो पहुंचे, गाना कई बार रिकॉर्ड हुआ। मदन मोहन रफी साहब से बार बार रिकॉर्डिंग करवा रहे थे। कई टेक के बाद रफी साहब ने जब इसे फाइनल रिकॉर्ड किया तो वो कमाल का है। हम बात कर रहे हैं फिल्म हीर रांझा के गाने ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं की। गाना सुनकर लगता है कि मोहम्मद रफी ने गाने में अपना दिल उड़ेल दिया है। ऊंचे सुरों में गाते हुए उनकी आवाज में जो तड़प महसूस हुई है वो किसी को भी इमोशनल कर दे।

दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव है और SBS पर इस वक्त चल रही है सुरों की महफिल। आज मैंने 90s और 2000s के गीत जो है आज आपके लिए चलाइए। तो चलिए बढ़ाते हैं इस महफिल को आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

इसी बीच बताना चाहूंगी कि राजेंद्र जी आपका मैसेज भी आया था गीत की फरमाइश के साथ. मैंने कोशिश की पर अनफॉर्चुनेटली मैं वो गाना नहीं ढूंढ पाई हूँ. तो कोशिश करूंगी कि अगली बार आपके लिए वो गाना जरूर ढूंढ के बजा दूँ.

दोस्तों, घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि मुझे अब जाना होगा। गाने आपके लिए अभी कुछ देर और चलते रहेंगे, तो उसकी चिंता ना करिए। और जाते जाते मैं अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूंगी। स्पेशल मेंशन उन सभी को जिन्होंने आज मैसेज भेजकर मेरा साथ दिया, राजेंद्र वोहरा जी, अमित चड्डा जी, हेमलता पुरोहित जी, कुमार जी, और आपके प्यारे प्यारे खानों के नाम जो आपने मुझे भेजे, वो सुनकर तो बस भाई दिन बन गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। कल फिर हम हाजिर होंगे इसी समय एक नए प्रोग्राम, नई खबरों, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुझे दीजिए इजाजत। SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति शर्मा को। शुभ रात्रि।

0: all the Bollywood hits you could ever want.
1: This is the Bollywood session on SBS South Asian.
2: SBS Audio.
3: अपनी वेवलेंथ नाल मेल खांदिया तरंगा सुनने लई प्ले बटन दबाओ.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
3: फिलहाल ही सट तो वट भाषावां विच खबरां भी. तुहाडे मूड नाल मेल खांदा संगीत अते मनमोहक पॉडकास्ट भी जो तुहाडी उडीक कर रहे ने. SBS Audio ऐप डाउनलोड करो जां
2: sbs.com.au/audio.